100.9 MHz का साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.radiodahatin.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:45 बजे को खबर नाम और वेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य खबर

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: राष्ट्र बैंक इजाजत प्राप्त 9 वर्ष को वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्क परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: जरूर माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: 为了帮你 Extreme Energy Drink
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।